तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारी गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अरसा तीर्थ नाले।

सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्तासे, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित।

सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सभा करतारा, मोर अच्छा निज करदा करिया, सब बैरन को आ संगरिया, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहा प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारिया, चुन चुन सतर हमारी मारिया, आप हाथ दा मुझा अवरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हु जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तुज जो करियो रच्छा, राख लिहो मोहि राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी।

कबहु न बिकट रहे जल तो वह देह अनियत शोध कह हुई काचि पीत मन हर के नाम की महिमा उज नानक नाम उदरी पतत बहमूच बहुत से अणु जम को पाव व्यापन के जतन कर तसन ना त्रा पै पी खनि गगन बो जाय कोटे उपाव दरगन से जाय छूट स्न ऊब पयार मुहि व्याप हमार जाल अवर कर दू सकल जमडा न गोविंद भजन बेन तेर न हिमान हर का नाम जब त दुख जाय नन बोला सहज सुभाई चार पदार्थ जे कुमा गसा जनक सेवा लागे जे को अपना दुख मटाव हर हना वृदा सदगाव जे को अपने सोबा रोरा सा संग होम शोर जी को जन्म मरण ते डर साध जन की सरणी उपर जिस जन का प्रवदास प्यास नानक तक बल बल जा सा सकल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जा को मिटे अभिमान आप सकाओ जो जान नीचा सो गण सब दूचा जा का मन हो सकल ग्रीन हर हर नाम दिन काट काट चीना मन अपनी ति बुरा मिटा न पीख सकल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जान समृष्टि नानक पाप नहीं दे पा निर तन कर तन तिरु नाउन था को नाउ तेरा था उन माने कब्र तिरु मान सगल कटा कव दिवह दान करन करावन हार स्वाम सगल कटा के अंतर जामे अपनी गात में जान हुआ पिया अपन संगा प्रभराति उमरी उस्तत तम ते हुए नानक अवरण जान सको सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मार हिरिया सगल उद्यम उद्यम पाला हर को नाम जाप जी सदा सगर बानी में अमृत बानी हर को जा स्मर सन बखानी सगल थान देव हो तुम था नानक जी काट वासा हर नाम श्लोक निर्गुणी आर ए आने सो प्रभ सदा संवार जिन की आदेश जीत राख नानक नेव ही नारष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कौन बोलते कम दृष्टा ने जिन तुम साज सवार सी गारिया गर्भगन वह जिन है उभारिया बार व्यवस्था तो जह प्यारा दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद पया उपर साख सैन मुख अपया बैठ कव दैन निर्गुण गुण कशुना बुझ बख्श लिहो तो नानु सु जय जय प्रसाद तारूपर सुख बसा सुत प्राद मीत बनता संहस जिह प्रसाद पीव शीतल जल सुखदाय पावन पाव कमला जय प्रसाद भोग सब रसा सगर समग्री संग साथ बसा दीन हस पाव करण नीतर रसना तह त्याग प्रसंग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापी नन कर लिहु प्रव्यापिया अंत जो रखन हार ते स्यों प्रीत न करा गवार जग सेवा नव निध पावता से मूढ़ मन हिलाव जो ठाकुर सद सदा हजूरता को अंधा जा दूरी जा की टहर पावा दरग मान तो सह बसा रमक दया जा सदा सदा इहु पुलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौड़ी संग्रचा साज छोड़ झूठ संगवाचा जो छड़न सो सुथेर कर मान जो होवन सो दूर परा नय छोड़ जाय तुका सराम कर संग सहाय दह पर हरा चंदली प्यो तार तोय कर दीत वसम संग हो अंत गुम पतत विकरा नान काली हु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग चारा करा दिन रात बाहर पीख अंतर मल माया शब सना काश कराय छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्या पहलु समान अंतर अगन बाहर दान स्वाह गाल पाथर कैसे तरया था जाके अंतर बस प्रभाव नानक तीय जान सहज समाय तो सोन अंधा कैसे मारुक पाव कर गिहूड़ ने बहाव कहाँ बुझार बुझा डोरा ने कही है तो समझ पूरा कह बिशन पात गावे गुण जतन करे तो भी सुर पंग कह बिन

पर उसका विश्वास न हुआ जिसकी वस्त्र तहाकारक है, प्रभु की आज्ञा माना मात है, उससे चौगुण करें हर नानु साहिब सदा दयाल मन को पाया तुम माया की हित सर्वरूपत जान नियत बिर की छाया सिंह रंग लावे ऊह बिन से हमार पछतावे जूदी सह सुचालन आर लौट रही होते हैं अंदर अंदर

ही लेव लाभत श्राम सनिह जय प्रसाद रघुल रहत मांस खुपावे हर हर जह कहत जय प्रसाद सगल क्षेत्र ठाकी मां सरणी पार ठाकुर प्रभुता कह जय प्रसाद तुझको ना पाहु चय मन सासा समर प्रभु चे जय प्रसाद पाय दुर्लभ दीह नानु ताग भगत करी जय प्रसाद आपु खन पहरी जय मंदिर समृत कुमाल की जय जय प्रसाद असव हस्ता सवार मंत प्रभु कहो कबू न बसार जय प्रसाद बाग मिर्ख तना राख पुरुष प्रभु अपने माना जैन तेरी मन बन तो बनाय उठ बैठ तो सद तहदयाय तहदयाय जो एक अलख है हाउ हा नानक तेरी रख है जय प्रसाद करह पुन बहदान मनाष पर कर तुस्का ध्यान जय प्रसाद तु आचार व्याव हर तह प्रभु को सास सहज तर जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर हो सदा नु जय प्रसाद तेरी निक जात सो प्रभु सिमर सदा धन राज प्रसाद तेरी पात रह गुरु प्रसाद नानक जास कह जय प्रसाद सुनह करुण नाथ जय प्रसाद पीख विस्मा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज वसना जय प्रसाद हस्त कर चल जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज जो संभाव है सब प्रभु त्याग बरकत लाग गुरु प्रसाद नानक मन जाग जय प्रसाद तू प्रगट संसार तह प्रभु का मूर न मन वसार जय प्रसाद तेरा प्रताप हरि अमर मूढ़ दूता को जब जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे दशा जान मन सदा हजूर जय प्रसाद तू पावे सा जरी मन मेरे तू ता सुरा जय प्रसाद सब का तू

ब्रह्मज्ञानी का नह तंदा ब्रह्मज्ञानी लितावत बंधा ब्रह्मज्ञानी का हुए सुपला ब्रह्मज्ञानी सुफल उफला ब्रह्मज्ञानी संग सकलोधारणा ब्रह्मज्ञानी जापाय सकल संसार ब्रह्मज्ञानी का एक रंग ब्रह्मज्ञानी का बसा प्रवसा।

सुनन ब्रह्म ज्ञान कन विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का वीरता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंद ब्रह्म ज्ञान का निर्मल बंद ब्रह्म ज्ञान जस करा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बैल प्रता ब्रह्म ज्ञान का तरफ भाग्य पाया ब्रह्म ज्ञान का बैल बल जाय ब्रह्म ज्ञान का खुद जहां महेश्वर नन ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाहि ब्रह्म ज्ञान का कौन जान पेद ब्रह्म ज्ञान को सदा दिस

प्रभु की कला बिना कहता वह जिक हो वह दातार दिख दीन हर जन गावार जिस गुरु प्रसाद टूट हव रोग नान सो जस रोग जो मंत्र काव थम थमन त्यों गुरु का शब्द मन हस्थमन ज्यो पा खान नाव चढ़ कर प्राण गुरु चरण लगत निह तर ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन दिख मन हो विगास ज्यो महा उदयान महाबारक पाव त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तन संतर की बादशाह तूर नानक हर रोचा पुर मान मूर्ख काहे बिरे लाई है पर लिख का लिखिया पाई है दू सुख प्राप्त देवन हार पर त्याग दूत सच तार जो काश करे सोई सुख मान पूला काहे फिरया जान कान बस ताई तेरा संग लपट रहे रास लोभी पतंग राम नाम जप हृदय मह नानक पाद सीधी कर जाहे जिस वखर को लैन तू है राम नाम संतन कर पाया।

संसार। जान का शिव सवर्ण भाग जान का संग एक लेव लागी, जान का संग एक लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जान का गुरु प्रसाद नान खल पावे श्लोकाद सच जुगाद सच है पे सच नान कोसी पे सच।

काय प्रभवन स्मर समाय जुहुआ हुत सो जान प्रभवन का कुशान दुखी महम कान बखा नाम दुखा गुण कही कना जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कह नानु से जन पूरे मन मेरे दिन की ओट ली हे मान तन अपना दिन जान दी हे जेन जाने अपना प्रभु पुछत सुजन सरथ हो का दाता तुझकी शरण सरस को पाव तुझका तरस सब मेटाव और सयान सगरी शाट दिशन की

कर गहु नाम हरवाथिहु तन संचहु वह भगवंत संत जनक निर्मंत ई काश राख मर माहि सर्व रोग नान मिट जाहि जह तन को चार कुंट उठ तावे सो तन हर शिवति उपावे जस सोखान तो बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत

जब इसका वरण चिहन न जापत, ताब हर्ष शोक कह सब व्यापत। जब अपना पूरा पार ब्रह्म दम्बूह कह कसुत परमा अपन खीरा वर्ती जा नान करने ना दूजा जम हो तो प्राभु की बलतानी। तब बंध मुक्त कहो किसको गणि जबी कह हर गुम अपार, तब नर्क सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई तब

करियार के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या मन अंतर विश्वास कर मान्या करणा नानक के जाने जन लागो हरि कहना आसन वृत्ति जय शिव कौ सेवा बनायु कुंभुज परम पद पाई हरि उपन विचार जाग मन वस्या निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदर पूजा गुरु के पैरे लोग सुखी है पर लोग सुहिले नानक हर प्रव्याप मेरे साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव प्रभ परमानंद राम नाम तद कर विचार दुर्लभ देह का कर उदार अमृत वचन अर्घ गुण गाय प्राण तरण गाय है स्वावठ पैर प्रभि कम नीरा मिटा ज्ञान बिन सन्धीरा सनपदी स हृदय साव मन छे नान खर पाव हलद बलद दुई दिह स्वार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर पूरी दीखया जस मन बसा तो साज प्रीखया।

गुरु नानक नाम बचन मन सुने हुन दान जप मन कुए सब जग महता गया तुई गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन बिस्तराम कोड़ा अपराध साधु संग मिटै संत कृपा ते जम ती छुटा जाके मस्तक करम प्रभाई साध सरण।